देवकी जय। स्वयंभू बाबा श्री देव गुरुजी महादेव की जय। द्राष्टकम् नमामि शमीशाश्माकाशवासं भजेहम्।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्रीशा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान ईश्वरानंदपुरी सद्गुरुदेव की जय।

0: की जय।
1: श्री माधव की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय। एक और

देव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गम्यहम्।

0: इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं वेद सार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीप नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। संभव

बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री सतगुरु देवा की जय। बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय।

ओम शलपुरजी महादेव की जय। वादिदेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश।

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांति शांति शांति ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, होम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ,

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहरं

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरु जी टोल्ड, गुरु जी गेव यू द mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called dhirti,
0: shama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना।

0: नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है.
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता.
1: Purity.
0: पवित्रता बहुत जरूरी है. मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा.
1: In Brihadaranyaka,
0: एक मिनट, आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyak Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. धीर विद्या बुद्धि माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी मनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर, एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
0: विद्या
1: नॉलेज,
0: नॉलेज जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आपको.
1: सो यू आर प्योर व्हेन यू आर नॉट हैविंग ऑल दिस अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड, माद मोह राग द्वेष एंड सो ऑन, ऑल दिस.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: इन वेदर्स देयर आर टू टीचिंग्स व्हिच आर टॉट ऑन द बिगिनिंग, टेल द ट्रूथ एंड फॉलो द धर्म, फॉलो योर ड्यूटी.
0: ए कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: सो देर इज ओनली वन रोड विद डिफरेंट नेम्स. Somebody is calling yoga, somebody is calling ज्ञान, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: बम्बई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम हाई, रतलाम
2: is telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना.
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्व्स इज कॉल्ड नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवर सेल्व्स.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर.
0: नियम मीन्स कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ, दिस इज कॉल्ड नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yes.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: सो
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se

0: आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की.
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाइ द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनास एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा एंड यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ये बैठा ना.
0: बाबा रामदेव जी. कहाँ? अच्छा वो हमारा चेला है वो. इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं? ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा?
1: मींस धारणा
0: नहीं लेगा. नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द दोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi, you also take

0: your 21 generations across this world. They said, no, thank you so much.
1: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
0: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
1: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
0: Before meditation, you need some knowledge.
1: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया.
0: And this knowledge became now business.
1: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी-बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
0: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
1: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
0: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
1: अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
0: From all of
1: 500
0: this,
1: का ना, 500 का.
0: From all of this you will take
1: 500
0: 500
1: का, ठीक है ना?
2: 2000
1: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी?
0: So
1: नहीं लेगा क्या?
0: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
1: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
0: Now we are like
1: again hand, yes.
0: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
1: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
0: So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
1: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व तो होता है, उसी को आदमी याद करता है.
0: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
1: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
0: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
1: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता.
0: There is a family.
1: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
0: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
1: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है

0: कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं।
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ।
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, aham brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: So 12th class is भक्ति।
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते।
1: So first
0: श्रवण भक्ति।
1: So first is listening, so listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Vishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है।
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next
0: Dasya, Sevak, Shishya, usko Dasya Bhakti kaha gaya hai.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: Dash, apna istitva, apna mahatva, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके।

0: के गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू यू बिलीव टू एंट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा मित्र, फ्रेंड.
1: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
0: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए. वो क्या है? ज्ञान की भूमिका.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books.
0: उसमें पहली बुक्स क्या है? सुभिच्छा. क्या है भैया? सुभिच्छा. सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना.
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे. अच्छा अब बोलो गुरुजी.
1: गुरुजी
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले संन्यास.
1: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: विचारणा मींस थिंकिंग. इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल, यू आर थिंकिंग लाइक योर गुरु.
0: तन मानसा. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा. गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है. इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा. व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉट.

0: के प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: And then afterwards, is turiya avastha the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that? It doesn't attract
0: at all. इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदि देव देवेश्वर महादेव की जय. इंदुदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, वेलकम। फॉर सम वन ऑफ यू इज गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम वन इज गुड इवनिंग एंड सम वन हैव लंच। सो बेस्ट इज टू से हरि ओम, वेलकम। टुडे विल बी द मेडिटेशन ऑन चक्रास एज अ ग्लिम्स ऑफ द चक्रास। We always speak about chakras and body in detail. If you would like to know more in detail, then of course you should read this, our chakra book, Hidden Powers in Humans. But I will tell only the glimpse of it. Our consciousness or our self, the Atma, is one with the Supreme, the Cosmic, the God, which has no form, no name, no form, but He sees us.

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

अलग पुरीशा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my...
2: In America.

0: Okay.
1: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
0: Look, Yoga and?
1: Daily Life Foundation, Austria or India?
0: Okay.
1: India. Yoga and Daily Life
0: Yoga
1: Foundation.
0: In?
1: Yoga in Daily Life.
0: Yoga in Daily Life.
1: Foundation.
0: In Austria.
1: No, New Delhi.
0: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor. Let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi. And all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Ke dollar?
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So, Brahmarishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad duk dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagor.
2: नागौर दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस 9 लाख जलपान 11 लाख कीट पतंग 10 लाख पखेरु 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है 3,99,999 मनुष्य है लेकिन बिना सिंह पूछ के हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है दया नहीं है क्षमा नहीं है शीलता नहीं है शुचिता नहीं है समता नहीं है तो मनुष्य कहना लायक नहीं है तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर, क्या जहां

मेरे को, मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

एंड भगवान शिवा स्वयंभू ही इज द ऑथर ऑफ द योगा. मंत्र, यंत्र, जंत्र, ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन, योग, वॉट एवर ऑल बट ह्यूमन नोज टूडे इज द ब्लेसिंग ऑफ द शिवा गिवन टू द मैन काइंड इन ऑर्डर टू सर्व ऑल क्रिएचर्स एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन्स फ्रॉम द आसुरी शक्ति एंड लीड टूवर्ड्स द दैविक शक्ति. सो आई एम श्योर पीपल विल एप्रिशिएट, पीपल विल, द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द 21st of June, and they are thanking the Modi ji, and our Brahmalina Pujya Anandananji Maharaj, his Mahasamadhi Day, Brahmalina Day, is also 21st of June. So how? So we can celebrate Day of Yoga and Swamiji's Barsi celebration. So, my dear India, still Indian Bhaktas, Indian people, every Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, all they are helping the Nepal people, and many, many people from many, many countries, they are coming. We are thankful for them. And we pray to Almighty that it should not happen such thing anywhere to anyone. So thank you for coming. And if you would like to announce or give, we met within 3 days, so we can organize some trucks to bring the food. So not from the Jaipur, because half एक्सपेंडिचर तो ये ट्रक के पेट्रोल में खत्म हो जाएगा. सो वी विल ट्राई टू बाय ऑल दिस मटेरियल. यू विल सेंड द ट्रक, बट ऐसा है कि यहाँ से नेपाल की बॉर्डर तक आने जाने का कितना हजारों का डीजल बलेगा. वाट एवर, ओके. सो वी शेल सेंड फ्रॉम हियर. हरिचंडी बताएंगे, हमारे रिस्पेक्टेड वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सो द ग्रीन लाइट एंड वी कैन सेंड सम ट्रक एंड सम फूड. सो थैंक यू वेरी मच टुडे. वॉट एवर यू विल गिव आई विल अप्रिशिएट इन नेम ऑफ द नेपालीज. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ओम रिमेन विल ओम. धर्म विल रिमेन द धर्म. एंड इफ यू लाइक टू प्रैक्टिस, okay, if you don't like to practice, it's okay. But if you practice yoga, it has nothing to do with my religion or your religion. It has to do with your good health, your peace of mind, anti-stress, and for the spiritual development, it is the science. Therefore, Om should remain. You all should write, please, a letter immediately, as soon as possible. बोल सतगुरुदेव की, दीप नारायण भगवान की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की. ओम. सभी बोले.

श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: आत्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सो नरसिंह, लेट्स ट्राई नमोस्तु नंता अगेन विदाउट सिंगिंग। We have many stotras to learn this
1: stotra navchite

ओम शलपुरजी महादेव की जय। द्वाद देव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर।

देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति ही।

0: की सनातन धर्म की। गुड इवनिंग। देयर इज नो बैड डे।
1: नेसो जाने špatné dny।
0: देयर आर बैड इवेंट्स।
1: सो špatné

0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: गंगा मैया की
1: जय।
0: यमुना मैया
2: फ्लिनो वे स्वाते जमे इंडी
0: आवर एडोरेशन टू

0: तारे ले गई रे। एक पैर के अंदर में
1: ओ सहस्र चक्र।
0: Then he said, what you will be do? He said, what you will do?
1: И он там каже, что я чините?
0: Yeah. He's alone, dances, eh?
1: Он плеше там сам.
0: And then what it is, how it is coming. Then he remained, शिव भगवान मनुष्य वो हो के कि कैसा कहा है तुम्हारा कि वो मेरा है तो इसमें ये ले बना दिया ना ना

तो कर्म योगी, भक्ति योगी, राज योगी, ज्ञान योगी, प्रेजेंस हियर इन दिस डिवाइन प्लेस।

one great, great goddess. Always I was thinking, you know, not only in India, but mostly all everywhere around the world, only mothers, they are more devotees to God than men. Why this is happening? Every satsang you go, there are majority of the mother or sisters, and what called brother or the fathers, or they are less quantity. Because the mothers and sisters, they are more the toward thinking to God. And in similarly in India, that by Meera, the divine bhakti she had, and she was especially in Rajasthan. She born in Rajasthan, and she was great devotee of God. And she write one bhajan, a divine bhajan. You know that she, how deeply she was, this wrote the bhajan, and how deep was she was feeling that bhajan toward God. So great. Paya ji maine Ram Ratan Dhan Paya. Ram Ratan Dhan Paya. Jagat mein lage sab phika. पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, मेरे सतगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मितिया जगत में सब खोवाया। ओ गुरुदेव, सी वॉज प्लानिंग दिस भजन। पाया जी पाया मैंने राम रतन, द गॉड ग्लोरी इन माइन ज्वेलरी, गॉड नेम इज लाइक ज्वेलरी। पाया जी पाया मैंने राम रतन धन पाया, मेरे सतगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया, माय गुरुदेव गेव, दैट इज द यू कैन नॉट कंपेयर इन द प्राइज, आउट ऑफ प्राइज, हायर देर नो प्राइज, इट प्राइजलेस वन थिंग, देर नो प्राइज, दैट मे बी नो मेटेरियल, बट यू कैन नॉट गिव प्राइज मिलियन ट्रिलियन और बिलियंस मनी, यू कैन नॉट गेट. So Mirabai said that I got that name, you cannot buy that glory. Janam janam ki punji pai, life punji means the jewelry or wealth. Jagat mithya jagat mein sab khovaya, these worldly materials, it is like only just few days or 50 years or 75 year or 80 year or 100 years, and it will remain here. आया सो सब जाएगा क्या राजा रंग बजीर, कोई सड़ सिंघासन कोई बांध जंजीर, हो ऑल विल गो, एंड दिस मेटेरियल थिंग्स विल रिमेन हियर, एज लाइक बिफोर पीपल वॉज लिविंग समवन हियर बिफोर अस, नाउ वी आर हियर, एंड आफ्टर सम ईयर्स समबडी विल हियर, एंड वी विल बी समवेयर फ्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो दैट मीरा वॉज सेड, कर कृपा अपनाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मेरे सतगुरु दिया मोलक वस्तु, खाया ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवाया. दे मदर्स दे नो ऑलवेज सिंग दिस भजन्स, खाया ना खूटे, एज मच यू कैन ईट दिस गॉड भजन और रीड और राइट और सिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजिंग गॉड नेम, ऑलवेज इंक्रीजिंग. जन्म जन्म की पूंजी पाई, लाइफ एंड लाइफ ज्वेलरी आई गॉट दस इन दिस लाइफ. खाया ना खूटे, चोर ना लूटे, द थीप कैन नॉट स्टील द गॉड नेम, द मेटेरियल थिंग्स दे कैन स्टील एनीवन, बट नॉलेज विच यू हैव डेवलप्ड इनसाइड, द कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस विद इन द यू, दिस सुप्रीम नॉलेज गॉड नेम और गॉड ज्वेलरी दैट विद इन यू, एंड इट विल गाइड एंड प्रोटेक्ट एंड लीड अस इन द डिवाइन पाथ. That Mahaprabhu is in the golden, what called the golden text written there. If you lead your life according the ethical principle, you can fulfill your dharma, and you fulfill your dharma, and it will lead you in the God direction, divine direction. Every creature have the divine light. Love all creatures. If not more, then at least as much as yourself. That is divine sense. This is what I'm talking or what I'm preaching. This all from this Mahayogis, Gurus, Paramparas, Rishis.

divine names, divine jewelries. सत्य की नाव केवटिया सतगुरु भाई, ठीक है, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु भवसिंधु तिराया, भवसिंधु तिराया, दैट कॉल सत्य की नाव, द ट्रूथ बोट एंड सतगुरु इज गुरुदेव इज रोलिंग बोट, भवसिंधु तिराया ही लीड मी दस क्रॉस दिस ओशन, के भाई मीरा प्रभु गिरिधर नागर, के भाई मीरा प्रभु गिरिधर नागर, हरस हरस कर हम यस गाया, ओ गुरुदेव यू आर डिवाइन, यू आर ग्रेट, यू आर द माय प्राणा, हरस हरस कर, हरस मीन्स हैप्पी, सो हैप्पी, सी वाज सो हैप्पी, सी सो हैप्पी, एंड सी वाज सिंगिंग द भजन्स डे एंड नाइट, एंड कर कृपा मोये भवसिंधु तिराया, गिरधर नागर, गिरधर मीन्स कृष्णा, गिरधर मीन्स गुरु, गिरधर मीन्स द गॉड, मोय भवसिंधु तिराया, सो दैट इज अ डिवाइन डिवाइन डिवाइन पाथ फॉर ह्यूमन लाइफ, एंड वी आर हैप्पीएस्ट वन, दे आर वी आर ब्लेसेड वन दैट वी हैव दिस परंपरा, एंड वी आर ऑलवेज प्रेइंग एंड सिंगिंग एंड ऑलवेज थिंकिंग टू गुरुदेव एंड गॉड, एंड दैट इज महाप्रभु होली गुरु जी इज मैनी मैनी भजन, one of them, one bhajan, तेरी

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन द बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयर फॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्म दैट इज ह्यूमन लाइफ गॉड ऑलवेज इज देयर ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंस एवरीवेयर बट वी नीड टू फील एंड बी डिवोटी बी डिवाइन लाइफ सो दिस ग्लोरी ऑफ द गुरुदेव परंपरास योगीज ऋषिस एंड द गाइडिंग अस प्रोटेक्टिंग अस एंड गिविंग ऑलवेज द डिवाइन पाथ टू अस सो वी आर वेरी हैप्पी वंस अगेन दैट वी आर हियर एंड वी आर थिंकिंग ऑलवेज टू विश गुरुजीज हेल्थ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ विदाउट हेल्थ विदाउट गुड हेल्थ इज ऑल वेल्थ इज नॉट सो सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ सो हेल्थ इज नेसेसरी डे एंड नाइट वी आर ऑल डिवोटीज थिंकिंग अबाउट विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड ही विश्व गुरुजी ऑल्सो थिंकिंग ऑल ऑफ अस एंड वी आर ऑल इन अंडर द वन ट्री एंड वी आर ऑल प्रेइंग अंडर डिवाइन अम्ब्रेला ऑफ माँ प्रभु जी दिस डिवाइन अम्ब्रेला भक्ति सागर द ओशन ऑफ द भक्ति द ओशन ऑफ द आवर भक्ति वॉट यू कॉल भक्ति दिस डिवाइन डिवाइन डिवाइन नेम ऑफ गॉड सो प्रे ऑलवेज टू विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड रिपीट मंत्रा टाइम टू टाइम फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली व्हेन यू हैव टाइम रिपीट मंत्रा फॉर विश्व गुरुजीज हेल्थ वी आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ विश्व गुरुजी वी आर ऑल हियर बिकॉज द होली गुरुजी वी आर ऑल हियर बिकॉज आवर परंपरा ऋषिस गेव अस गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन सो वी ऑल नीड टू थिंक टू विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड ऑलवेज रिपीट मंत्रा प्रे टू सुप्रीम कॉस्मिक लाइट गुरुदेव गेव अस द ब्लेसिंग एंड रिमूव ऑल डिजीज एंड ऑल डिस्टर्बेंस विच आर द एवरीवेयर रिमूव अवे एंड प्रोटेक्ट अस सो प्लीज सीट कंफर्टेबली वी विल सिंग थ्री टाइम ओम थ्रू द ओम वी विल प्रे टू कॉस्मिक लाइट टू अवर परंपरा टू गिव द प्रोटेक्शन एंड गुड हेल्थ टू विश्व गुरुजी So, we will sing three time Om. Deep inhale. Bhaiyo, siddha bhyo. Teen baar Om ra ucharan karola. Babaji re swaste re vaste. To is siddha bhe para ne onkyo ban kari pari na gyaro swas le paro na yo Om ra ucharan karola po. Hayang hate teen baar. Dekhe, thikhe. Please do deep inhale.